0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गाने हैं, उसमें एक नई एंट्री है। हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना होने वाला है, अ स्पेशल स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है, शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है, साडी सुन बाय हर्ष नुसी। हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव। गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, जो पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप हुआ है, चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक Only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 10.
2: Ho chup

0: This one is such a fun song. गाने का नाम है उड़ी उड़ी by अनीश सरकार. हृदय पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके this week on गाना नंबर 9. इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन है.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करे. मेरा हैंडल इज @RJKanika. फॉलो करना बिल्कुल फ्री है. @RJKanika पर कोई गाने सजेस्ट करने हैं, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप. जो अगले वाला गाना है उसे इस काउंटडाउन पे पूरे 23 हफ्ते हो चुके हैं. इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. जितना खूबसूरत ये गाना है उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है. आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है. उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है. आई एम टॉकिंग अनूप जैन, एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक. बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ. प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला, बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए, और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है वो इतना स्पेशल लगता है. कोक स्टूडियो को हम अक्सर फोक कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के फ्यूजन से जानते हैं, लेकिन अनूप जैन का गाना जिसका नाम है अर्ज किया है, दैट्स मोर देन अ फ्यूजन, इट्स अ लिटरेरी फ्यूजन, जहां उर्दू शायरी मिलती है कंटेम्प्रेरी पॉप सॉन्ग राइटिंग से. एंड अनूप जैन इज द किंग ऑफ पॉप सॉन्ग राइटिंग. एंड आई स्वेयर ये गाना इस बात का इतना बड़ा प्रूफ है दैट आज इंडिया का इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपने आप में इतना मच्योर, इतना इंडिपेंडेंट हो गया इन रियल सेंस, दैट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक स्टूडियो भारत ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से. That's why this song sounds so incredible, because इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है. पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था, लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जंप करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
1: Number 8.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Gana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. Number 6.

0: The one and only Diljit Dosanjh, resident dealer of superhit songs, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसे पहले एक नई नवेली एंट्री हुई जसलीन रॉयल का गाना इनाम, जिसने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ. मेरा हैंडल इज @RJKanika. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू शाइन स्पॉटलाइट ऑन आर इंडी पिक ऑफ द वीक. एंड आज का गाना स्पॉटलाइट इज गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था. आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बड़े बड़े कोलैबोरेशन देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वॉजेंट लाइक सच अ रेगुलर डील. एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट. एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए. एंड देन दिस सॉन्ग वॉज अ एब्सोल्युटली जेनरेशनल रेवोल्यूशनरी song, cause एक तरफ है येलो डायरी, वन ऑफ द बेस्ट इंडी पॉप बैंड्स दैट वी हैव सीन. मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी. कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है. सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग हैज शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहाँ एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहाँ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, बातें हो रही हैं पर असली बातें होनी बंद हो गई है. येलो डायरी का गाना फीचरिंग शिल्पा राव. दिस इज रोज रोज ऑन अ गाना स्पॉटलाइट दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

डूड, दिस इज द सॉन्ग जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे एब्सोल्यूट टॉप फेवरेट वोकलिस्ट बन गए थे. व्हाट अ वॉइस, गूज़बम्स आ जाते हैं उनकी गाने के थ्रू. जो फीलिंग्स बयां करना जा रहे हैं ना, वो इनटू 10 टाइम्स फील होती है. राजन बत्रा की आवाज, येलो डायरीज का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दैट वॉज रोज रोज. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी प्लेलिस्ट में एड कर लीजिए. वन ऑफ दोज पॉप सॉन्ग्स जो उतने ही बड़े हुए जितने फिल्म के गाने होते हैं. ना काउंटडाउन पे आगे बढ़ने से पहले इट्स टाइम फॉर इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनिका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनिका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 5.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई भी गाना सजेस्ट करना हो, बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

The OG by Kumar Sanu called Tera Mera Pyar. इस गाने के बाद इतने सारे messages, कहानियाँ, किस्से सुनाए लोगों ने मुझे अपने कॉलेज रोमांस के. And अश्काई और मैं बहुत दिल से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं आपको इस सेगमेंट के साथ क्लासिक को इतना प्यार देने के लिए. वी रियली टेक योर रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली. जो इस हफ्ते हम गाना फीचर करने वाले हैं वो भी आपकी रिक्वेस्ट से ही बजा रहे हैं. The song we're gonna feature this week is

The OG pop star song, गाने का नाम है मोहब्बत लुटाऊंगा by अभिजीत सावंत। मैं ये सबका गाना बन गया था, लाइक एक पॉप एंथम बन गया था पूरे देश का गाना। साल था 2005, हमारे घर में लैंडलाइन होता था, कॉल करके SMS करके वोट्स भेजे जा रहे थे। पहली बार लगा कि टीवी से हमने किसी को जिताया है और सब उस जीत का हिस्सा थे। हमें मिला हमारा पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत, एंड ये था उनका पहला गाना मोहब्बत लुटाऊंगा। एंड इवन द सॉन्ग नाउ, जब मैं उस गाने की वीडियो को देखती हूँ विद मच मोर सेंस एंड पर्सपेक्टिव, इट ऑल मेक सेंस। उस गाने के थ्रू वो अपनी जर्नी ही तो बता रहे हैं, दैट थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था बॉम्बे से, जो एक स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे देश ने मुझे यहाँ जिता दिया, तो अब मैं सिर्फ मोहब्बतें लुटाऊंगा ब्रो। स्कूल में, ट्यूशन में, म्यूजिक चैनल्स पर, रेडियो पर, हर जगह अभिजीत सावंत ही थे। इट वॉज वन ऑफ दोज रियल रेयर मोमेंट्स। पर एकदम सच बताना, दिल के कोने में झांक कर बताना, झूठ मत बोलना मुझे, कहीं ना कहीं हम इस गाने को भूल चुके थे। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गाना चलते ही यू विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट सिंपलर टाइम्स। अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के लिरिक्स, प्रेम एंड हरदीप का म्यूजिक, 2005 का ये आइकॉनिक इंडी पॉप गाना, दिस इज मोहब्बत लुटाऊंगा ऑन आ कसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

अभिजीत सावंत की आवाज में दैट वाज मोहब्बतें लुटाऊंगा, बट एक्चुअली यू नो आदर लिरिक्स समीर ने क्या लाइंस लिखी हैं, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, लाइक एग्जैक्टली टेलिंग अभिजीत सावंत की जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो जो भी इंडी पॉप क्लासिक गाना है जो यू स्टिल लव हमारे साथ शेयर करो। अश्काय और मैं आपकी रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, वी माइट फीचर योर फेवरेट नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का आइकॉनिक कोलैबोरेशन, गाने का नाम है रांझा फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा। नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर। 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 3।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर लोग गाने सुन के गानों का नाम भूल जाते हैं और मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कनिका वो गाना नंबर 5 कौन सा था, जो गाना नंबर 9 पर बजाया वो कौन सा गाना था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी वॉज ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पर दिस वीक अनूप जैन का अर्ज किया है।
2: कायर जो थे वो शायर बने।
1: जसलीन रॉयल का इनाम ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7। फिर दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबीना।
1: संजू राठौर विद बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। स्टूडियो भारत का आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन द हरियाणवी सेंसेशन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग यानी गाना नंबर 1 पर है एक बार फिर से शीशा बाय मिट्टर और स्वरा वर्मा, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन। ये गाना भी 14 हफ्तों से बरकरार है। सो दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन गाना नंबर 2, फिर मिट्टर और का शीशा ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 2।

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची

Energy. It's hot.

मिर्ची। हेलो पीपल, वीकेंड फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्ची ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑयोंदिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉनस्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू क्लब मिर्ची, लेट्स गो।

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका, लेट्स गो।

0: वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे और चटन मिर्ची और ओम दिखा विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।
1: तो चाहते रख रहा जिन्हें भंगड़ा बना पंजाबी आ गए।

अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग देयर बेस्ट लाइफ और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

मानसून की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका विथ यू, लेट्स गो।

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त। लेट्स गो बेबी।

बारिश खिड़की पे बजती है, कभी बेस स्पीकर पे, और जब दोनों एक साथ बजते हैं वीकेंड ऑटोमेटिकली लेजेंडरी बन जाता है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑन द काउंट, लव मिर्ची टुनाइट।

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए, पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

वर्ल्ड कप का फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका।

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब मिर्ची इट इज विद मी मिर्ची और योंतिका।

का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश की स्मेल, फ्रेश प्लेलिस्ट और वीकेंड का थ्रिल, बस इसी कॉम्बो के लिए तो पूरा हफ्ता वेट करते हैं। अब डांस करना कंपलसरी है विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका विद यू, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर, क्लब मिर्ची।

फेरी लाइट्स चल रही है या कार की विंडशील्ड पे बारिश नाच रही है तो साउंड ट्रैक भी प्रीमियम होना चाहिए। वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची, लेट्स कीप द वीकेंड अलाइव विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंदिका बेबी।

एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज स्पीड से ज्यादा सेफ्टी को इम्पोर्टेंस दीजिए। वेट रोड्स पे ब्रेक्स को टाइम लगता है लेकिन एक्सीडेंट्स को नहीं। सीट बेल्ट ऑन रखिए, फोन साइड में रखिए और सेफली घर पहुंचिए। पार्टी बाद में भी होती रहेगी। डीजे रिचर्ड मिर्ची और ओयम टेका आते हैं ना क्लब मिर्ची लेके हर हफ्ते।

म्यूजिक का वॉल्यूम हाई हो सकता है लेकिन स्माइल उससे भी हाई होनी चाहिए। वीकेंड है बॉस, डांस करो, गाओ, बारिश एंजॉय करो और क्लब मिर्ची के साथ गुड वाइब्स स्प्रेड करते रहो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका विद यू टुनाइट।

दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा। दिल नाले लारे नी तू लाउण वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा। दिल नाले लारे नी तू लाउण वाली है, दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम टेक आउट विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

वीकेंड के प्लान सक्सेसफुल हो या कैंसिल, प्लेलिस्ट कभी डिसअपॉइंट नहीं करती। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। सो वेदर यू आर एट अ हाउस पार्टी, कैफे या अपने रूम में सोलो कॉन्सर्ट कर रहे हो, क्लब मिर्ची इज राइट देयर विद यू। लेट्स गो।

रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयरएवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड, मिर्ची ऑयो, दे गो विद यू, लेट्स गो।

बारिश का अपना स्वैग होता है भाई, कभी रोमांटिक कभी फुल फिल्मी, और हम लेकर आए हैं इसी वाइब के ब्लॉकबस्टर ट्रैक्स। कीप स्माइलिंग कीप ग्रूविंग विद डीजे विचरण मिर्ची और योंतिकांत क्लब मिर्ची।

वर्ल्ड कप का सीजन है, हर मैच एक इमोशन और हर गोल एक सेलिब्रेशन। टीम कोई भी हो, म्यूजिक सबका कॉमन लैंग्वेज है। लेट्स कीप द एनर्जी रोलिंग विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

कभी डांस फ्लोर पे स्टेप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एटीट्यूड होना चाहिए 100%. सो फॉरगेट द मूव्स, बस फील द म्यूजिक. दैट्स द क्लब मिर्ची वे विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योम दिकार.

फीवर भी फुल ऑन है। हर पास पे टेंशन, हर गोल पे सेलिब्रेशन, और हर सेलिब्रेशन के लिए एक ब्लॉकबस्टर गाना तो बनता है। तो सीट बेल्ट बांधो, वॉल्यूम बढ़ाओ, क्लब मिर्ची कंटिन्यूज विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

वीकेंड का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

0: बोला।
1: बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल विद यू, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर, क्लब मिर्ची।

destination. Club Merchie. Club.

रेन प्लस फ्रेंड्स प्लस म्यूजिक इक्वल्स टू वीकेंड गोल्स। और अगर फ्रेंड्स बिजी है तो स्पीकर को बेस्ट फ्रेंड बना लो, साथ डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो का तो है ही कंपनी देने के लिए। लेट्स गो अगेन।

रेडियो के बाद भी मिलते रहना यार फन रील्स बिहाइंड द माइक मोमेंट्स और एवरीडे मैडनेस के लिए फॉलो मी अयोंतिका ऑन सोशल मीडिया AYANTIKA. वीकेंड वाइब्स कंटिन्यू ऑन योर फीड टू. लेट्स गो. दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची अयोंतिका.

अपनी खिड़की खोलो और बारिश की हवा को फील करो, फिर वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दो। कुछ मोमेंट्स को सिर्फ एंजॉय किया जाता है, एक्सप्लेन नहीं। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका विद यू ऑन क्लब मिर्ची।

या संडे चिल, एक बात फिक्स है, अच्छा म्यूजिक कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, और जब क्लब मिर्ची हो साथ तो मूड ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो ही जाता है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिकट विद यू टुनाइट।

सर, अगर रोड्स पे वाटर लॉगिंग दिखे तो अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, स्लो ड्राइव करिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और फ्लडेड रोड्स को अवॉइड कीजिए। बारिश का मजा तभी है जब आप सेफली घर पहुंच जाए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची टुनाइट।

वीकेंड खत्म हो जाएगा लेकिन आज की मेमोरीज और ये गाने प्लेलिस्ट में हमेशा रहेंगे। सो लाफ अ लिटिल लाउडर, डांस अ लिटिल लॉन्गर और हर बीट को दिल से फील करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विथ यू टुनाइट।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर चाय के साथ पकोड़ा चल रहा है तो उसके साथ हमारा बीट्स भी जरूरी है, और अगर आप रोड पे हो तो रेन को एंजॉय करो, स्पीड को नहीं। क्लब मिर्ची में अभी पार्टी बस गर्म ही हो रही है। डीजे मिर्ची और योन दिखा विद यू टुनाइट, लेट्स गो अगेन।

फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो अगर आज रात किसी गोल के बाद पड़ोस से जोर का चीयर सुनाई दे, डोंट पैनिक। फुटबॉल लवर्स आर सिंपली लिविंग देयर बेस्ट लाइफ, और हम भी ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और योंतिका।

0: हॉट मिर्ची, इट्स हॉट.
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंटिका आपके पक्के दोस्त. Let's go baby.

वैसे पार्टी सिर्फ रेडियो तक ही क्यों? बिहाइंड द सीन्स क्रेजी रील्स और मस्त कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलना डीजे रिचर्ड ऑफिशियल को। पार्टी कंटिन्यूज ऑन एयर भी और ऑनलाइन भी। क्लब मिर्ची इट इज विद मी मिर्ची और योंटिका।

और इसी के साथ आज की क्लब मिर्ची पार्टी यही रैप करते हैं। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। बारिश को एंजॉय करिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप का एक्साइटमेंट सेलिब्रेट करिए अपनों के साथ, वक्त बिताइए और सबसे जरूरी सेफ रहिए। अगले वीकेंड फिर से मिलेंगे और लेकर आएंगे और भी ज्यादा म्यूजिक, मस्ती और मैडनेस। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप डांसिंग एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची। टाटा, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Free.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो इन द मॉर्निंग्स व्हेन यू वेक अप यू नो मूड नहीं होता है काम करने के लिए बट अगर फेस्टिवल डे होगा कोई उत्सव होगा देन वी वेक अप अर्ली बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि घर में बहुत एक्साइटमेंट होता है नए कपड़े होते हैं खाना होता है प्लान्स होते हैं पूजा पाठ होगा कुछ तो एक्टिविटी होगी गेस्ट आएंगे हम कहीं जाएंगे जो रूटीन होता है वो टूट जाता है आई रियली लव फेस्टिवल्स especially Indian festivals because हर festival में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है and I think that is what really excites me और नया concept होता है you know दिवाली के time हम लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं दशहरे के time हम instruments के बारे में सोचते हैं computer की पूजा करते हैं जब होली होती है तो रंग के बारे में सोचते हैं so many different ideas keep coming so जब उत्सव होता है तो उत्सव इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और भारत उत्सवों का देश है यू नो इतने उत्सव होते हैं रोज रोज कोई ना कोई उत्सव होता है और अलग अलग जगह में अलग अलग उत्सव होते हैं उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतने उत्सव देवी देवताओं के उत्सव होते हैं पेड़ पौधों को लेके उत्सव होता है पशुओं को लेके उत्सव होता है पितरों को मतलब एंसेस्टर्स को लेके भी उत्सव होता है इतने उत्सव होते हैं यू नो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो जैसे बाइबल में कहते हैं कि यू नो God created the world in 6 days. On the 7th day, He rested. इसलिए हर हफ्ता एक holiday होता है. In amongst Muslims, वो Friday होगा. Jewish लोगों में वो Saturday होता है. Christians में वो Sunday होता है. लेकिन ऐसा weekly holiday का concept Indian religions में नहीं है. Buddhism, Jainism and Hinduism में. यहाँ पे उत्सव कोई भी दिन मनाया जाता है based on either some event that happened या कोई season variation या you know basically the climate has changed. तो राजा उत्सव डिक्लेयर करता था और हॉलीडे होता था तो देयर इज नो रिदमिक हॉलीडे इट इज इररेगुलर कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है एक पूरा सीजन होता है जब आप ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं करते हो जिसको चातुर्मास कहते हैं रेनी सीजन का सो आई थिंक फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट थिंग टू डिस्कस नॉट अ स्पेसिफिक उत्सव बट जनरली उत्सव का मतलब क्या है वॉट डज इट मीन वॉट इज इट सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं हम लोग वॉट इज इट्स वैल्यू इन आर लाइव सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची
1: ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो
0: मदन उत्सव और वैलेंटाइन्स डे में क्या है सिमिलैरिटी बताएंगे देवदत्त कीप लिसनिंग

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर यू थिंकिंग ऑफ व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, एंड फेस्टिवल्स आर देयर ऑल द टाइम। कल भी फेस्टिवल्स थे, आज भी फेस्टिवल्स हैं, पहले जमाने में भी फेस्टिवल्स होते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे, और आज भी नए नए फेस्टिवल्स होते हैं, उनका रूप बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने अगर आप कालिदास की कविताएं पढ़ें तो वहां पे मदनोत्सव होता था। मदन मतलब कामदेव, गॉड ऑफ लव, और वी यूज्ड टू सेलिब्रेट द गॉड ऑफ लव। तो मदनोत्सव होता था वसंत उत्सव में, इन स्प्रिंग टाइम, और गणिकाएं नाचती थी। ऑल द गर्ल्स वर इनवाइटेड टू द किंग्स गार्डन, राजा के जो गार्डन था वहां पे उनको बुलाया जाता था, वहां पे खाना पकता था। दे वुड सिंग एंड डांस एंड प्ले ऑन स्विंग्स, और मजा करते थे, कामदेव की पूजा करते थे कि हमारी जिंदगी में भी प्रेम आ जाए, लव आ जाए। सो इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लव। आजकल हम मदनोत्सव को नहीं मानते हैं, लेकिन वी टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे। ऑफ कोर्स सम पीपल गेट वेरी एंग्री, वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, एंड आई कीप सेइंग अरे ये मॉडर्न वर्जन ऑफ मदनोत्सव ही है, कामदेव की पूजा है। यू नो होली इज ऑल्सो सेट टू बी रिलेटेड टू मदनोत्सव, वसंतोत्सव। अगर आप जितने भी ओल्ड काव्य पढ़े, संस्कृत काव्य, वहां पे मदनोत्सव के बारे में बहुत बताया गया है। फेस्टिवल ऑफ लव, वी सेलिब्रेट लव, वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट लव, कल भी आज भी। आई थिंक एवरी डे शुड बी मदनोत्सव, नॉट जस्ट ऑन सम डेज। सो एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट लव एंड वी शुड हैव अ गुड टाइम, बट इफ यू कांट, एट लीस्ट वंस इन अ ईयर सेलिब्रेट लव। थिंक अबाउट द पर्सन हू लव्स यू एंड होप दैट यू आर लव्ड इक्वली। ऐसी ही बातें हम डिस्कस करेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो, जहां पे हम वेद पुराण आख्यानों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका रेलेवेंस इन आवर डे टू डे लाइफ ढूंढते हैं।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: राम कृष्ण के जन्मदिन तो मनाए जाते हैं, पर शिव का क्यों नहीं, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: तो आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। हर देवी देवता का एक उत्सव होता है और उत्सव के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। सो स्टोरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन उत्सव। जैसे जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, सो दैट इज व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। जब ईस्टर की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जीसस रेजरेक्टेड हिमसेल्फ। यू नो, रमजान इज अ फेस्टिविटी व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कुरान वाज बीइंग नरेटेड सो फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो मंथ को रमजान कहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, समहाउ स्टोरी इज रिलेटेड टू ए फेस्टिवल। कृष्ण जन्म की एक उत्सव होती है, राम जन्म का एक उत्सव होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा शिव का जन्म के बारे में कोई फेस्टिवल नहीं होता या दुर्गा देवी के जन्म के बारे में, बिकॉज ये स्वयंभू है, ये अनंत है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, उनका मरण नहीं हुआ है, दे वर नेवर बॉर्न, दे नेवर डाई, वो अमर हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो वी विल नेवर टॉक अबाउट शिवा बीइंग बॉर्न, वी विल नेवर टॉक अबाउट देवी बीइंग बॉर्न और विष्णु बीइंग बॉर्न, बट वी विल टॉक अबाउट राम का जन्म के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि देखो कैसे कहानियों के माध्यम से एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। ऑफकोर्स शिव की पूजा होती है, शिवरात्रि होता है, शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो ये फेस्टिवल किसके लिए होता है? कहते हैं कि उस दिन शिव जी की शादी हुई थी, दैट इज वाई शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू हिज मैरिज, नॉट टू हिज बर्थ और एनीथिंग। सो अलग अलग स्टोरीज होते हैं। जब हम उत्सवों के बारे में बात करते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस स्टोरीज विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर फ्रेंड्स, कि आज ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स आर नॉट ऑलवेज रिलीजियस, देयर कैन बी आल्सो सेक्युलर फेस्टिवल्स। जैसे हार्वेस्ट टाइम में जब हार्वेस्ट होता है, तो जैसे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होता है, दीज आर नॉट रियली रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल्स, क्रॉप साइकिल्स, हार्वेस्ट टाइम, सोइंग द सीड, तो लोग फेस्टिवल्स मनाते थे। जब टैक्स कलेक्शन खत्म हो जाता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, नॉट एवरीथिंग इज रिलीजियस। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, देयर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर पॉलिटिकल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू सेक्युलर आइडियाज लाइक नेशन स्टेट। बर्थडेज आर ऑल्सो नॉट रिलीजियस फेस्टिवल, बट दे आर फेस्टिवल्स। सो ऑन द बर्थडे यू आर सेलिब्रेटेड बाई योर फ्रेंड्स, सो दैट इज ऑल्सो ए उत्सव। ऐसे ही बातें अबाउट फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एंड सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: द देवदत्त पटनायक शो। आज फेस्टिवल्स में बाजार हैं या बाजार में फेस्टिवल्स, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहाँ पे हम फेस्टिवल के ऊपर बात कर रहे हैं।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: कॉलिंग देवदत्त
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस, सो कॉल इन, आई एम वेटिंग।
4: हाय देवदत्त, मैं हितेश बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि फेस्टिवल्स पर मार्केट ज्यादा हावी होता जा रहा है, ओरिजिनल स्टोरीज तो जैसे गायब ही हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है?
0: थैंक यू हितेश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स की शुरुआत हमेशा अध्यात्म से शुरू होता है या एग्रीकल्चरल फेस्टिवल से शुरू होता है, कोई इवेंट से शुरू होता है, धीरे धीरे धीरे बाजार उसमें आ जाता है, मार्केट बिकम्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज ज्यादातर क्या खाना मिलेगा, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, क्या पार्टी करेंगे, ये फोकस हो जाता है। ऑल फेस्टिवल्स हैव एन इकोनॉमिक बेसिस, सो फेस्टिवल का पर्पस इज टू स्पेंड मनी एंड क्रिएट एक्सचेंज। आप देखेंगे जहाँ पे तीर्थ यात्रा होता है वहाँ पे मेले भी होते हैं, तीर्थ यात्रा बाजार और मेला का बहुत क्लोज संबंध है। तो पूजा पाठ के साथ बाजार हमेशा साथ में रहेगा, मंदिरों के बाहर बाजार होता है, चर्च के बाहर बाजार होता है, लोग जब मस्जिद जाते हैं तो बगल में आप देखेंगे फूड स्टॉल्स होंगे क्योंकि फैमिली जाती है वहां पे, सो इट इज एन इकोनॉमिक स्पेस, सो वी शुड नॉट रिजेंट इट, ये होता है, इट्स ओके। अभी देखिए ना, जैसे क्रिसमस में ज्यादातर लोग जीसस क्राइस्ट की बात नहीं करते, सेंटा क्लॉज के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सेंटा क्लॉज तो कंप्लीटली कमर्शियल है, उसके अध्यात्म ईसाई धर्म के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। गिफ्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं हम लोग, थैंक्सगिविंग डे के बारे में हम ज्यादातर टर्की के बारे में लोग बात करते हैं, अमेरिका में लोग नहीं बात करते कि वो थैंक्सगिविंग है क्या, क्या इतिहास था। सो दिस इज एवरीवेयर, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना। और ऑफ कोर्स आजकल जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, बिकम सो पावरफुल एंड मनी हैज बिकम सो पावरफुल दैट वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग बियॉन्ड मनी, वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग। शादी भी संस्कार नहीं रहे, अभी तो थिएटर बन गया है, नाच गाने का थिएटर बन गया है, वेयर हस्बैंड वाइफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड आर फोकसिंग ऑन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स। होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, वी आर इन अ डिफरेंट टाइम, मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बट धीरे धीरे धीरे करके जब लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जब हम अर्थ ढूंढने लगते हैं अपने जीवन में, तो हम सेलिब्रेशंस को छोड़ के उनके पीछे रहस्य जो है उसे ढूंढते हैं। यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड शेयर द आइडियाज अबाउट फेस्टिवल जो हम देवदत्त पटनायक शो में डिस्कस करते रहते हैं ऑन मिर्ची, एंड एनकरेज देम टू लिसन टू द शो, सो दे'ल रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशंस, इट इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग, विचार, भाव, रस, बहुत चीज होते हैं फेस्टिवल्स में, नॉट जस्ट मनी।
4: इट वॉज रियली हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू हितेश।
2: On Radio Mirchi,
3: The Devdutt Patnaik Show.
5: क्यों बदलती हैं फेस्टिवल्स की डेट्स? क्या है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहां पे आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फन फ्रॉलिक फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: द देवदत्त पटनायक शो
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो ज्यादातर अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिरों में रोज एक ना एक फेस्टिवल होता है। बनारस में एक फेमस कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार होते हैं। सो यू नो वी हैव दिस विच इज द कल्चर ऑफ फेस्टिवल्स। सो मोस्ट फेस्टिवल्स हैपन ऑन द वैक्सिंग मून टाइम। वेरी फ्यू फेस्टिवल टेक प्लेस इन द कृष्ण पक्ष और द वेनिंग मून, जब द मून इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, अमावास की तरफ जाते हैं। सम ऑफ दोस फेस्टिवल्स आर जैसे कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म का फेस्टिवल इज इन कृष्ण पक्ष, महाशिवरात्रि इज इन कृष्ण पक्ष, और इनफैक्ट हर महीने एक शिवरात्रि होता है, जस्ट बिफोर अमावास के दिन शिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवरात्रि, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि होता है। ट्रेडिशनली शुक्ल पक्ष को ज्यादा वैल्यू दिया गया था और कृष्ण पक्ष को कम वैल्यू दिया जाता है। और वन ऑफ द स्टोरीज इज दैट देवासुर में जब संग्राम हुआ था तो ब्रह्मा ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष होगा वो देवताओं के साथ जुड़ा होगा और जो कृष्ण पक्ष होगा वो असुरों के साथ जुड़ा होगा। जब उत्तरायण होता है तो वी मूव फ्रॉम स्प्रिंग टू समर टूवर्ड्स रेन्स, दक्षिणायण में वी मूव फ्रॉम द रेनी सीजन टूवर्ड्स विंटर टूवर्ड्स स्प्रिंग। तो वहां पे भी डिविजन हो गया था कि देवता उत्तरायण में बैठते हैं और असुर दक्षिणायण में बैठते हैं। ऐसे द वर्ल्ड इज बीइंग चर्न्ड, एक मंथन हो रहा है। सो फेस्टिवल्स आर ऑल्सो रिलेटेड ऑलवेज विद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स associated with astronomy, मतलब तिथि, phases of the moon, seasons, उत्तरायण दक्षिणायण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तारे कहाँ पे हैं, जैसे कुंभ मेला will be associated with the Aquarius constellation, तो stars, planets, seasons, moon, movement of the sun, all of this play a very important role in festivals. इसलिए festivals के date बदलते रहते हैं lunar calendar के हिसाब से। solar calendar के कुछ festivals होते हैं जैसे मकर संक्रांति, वो हमेशा every year January 14th को ही आएगा because it's a solar festival, लेकिन दिवाली दिन will keep shifting because it's a lunar festival. So whenever you discuss festivals, remember to look at the calendar. It is a great way to explain to children calendar, अपने दोस्तों के साथ कि nature में क्या हो रहा है, what is happening to the sun, what is happening to the moon, what is happening to the stars. Our festivals teach us about astronomy. तो अगर school में नहीं पढ़े हो तो at least festival के time पे तो सीखो, and these are the kind of things that you must grab from the Devdutt Patnaik show on Mirchi. Share it with your friends, show off with your friends and encourage them to listen to the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
2: The Devdutt on Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik show.
4: Kiski hai Diwali? Ram ki, Krishna ki ya Lakshmi ki? Kyun hai controversy? Batayenge Devdutt. Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत उत्सवों का देश है। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, वेदर इट इज हिंदू फेस्टिवल्स, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जैन फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, सेक्युलर फेस्टिवल्स, एथियस्ट फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल, हमको बहाना चाहिए फॉर पार्टिंग। और फेस्टिवल्स हमारा सांस्कृतिक पार्टी होता है। बट यू नो nowadays of course सबको controversy पसंद है, so now there are controversies about ये festival किसके लिए मनाया जाता है। So I always get this question, you know, दिवाली के time में एक story है। अगर आप बोले दिवाली हम क्यों मनाते हैं, festival of lights है, तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मी के लिए हम मनाते हैं दिवाली, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली के दिन पे, and लक्ष्मी आ रही है इसलिए हम दीप जलाते हैं ताकि वो हमारे घर आए। ये लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये राम जी ने अयोध्या आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ राम, इट इज नथिंग टू डू विद लक्ष्मी, और क्योंकि राम आ रहे हैं उनके साथ लक्ष्मी आ रही है। तो राम भक्त लोगों के वो बोलेंगे अलग आइडिया, जो लक्ष्मी भक्त हैं, जो वणिक समाज है, द ट्रेडर्स विल से नहीं नहीं लक्ष्मी की पूजा है। और एक ग्रुप आ जाता है श्री कृष्ण वाले, बोलेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ नरक चतुर्दशी होता है तो नरकासुर को श्री कृष्ण ने वध किया था इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सच क्या है बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बलि प्रतिपाद होता है, मतलब यहाँ पे ऑन दिस डे वामन ने बाली को जमीन पाताल लोक में भेज दिया था, तो मे बी दैट इज द रियल स्टोरी। तो इतने स्टोरीज में भी मेरा ये विश्वास है कि दिवाली फेस्टिवल सबको इतना पसंद है तो अपने फेवरेट गॉड की स्टोरी उन्होंने थोप दी, एंड वी ऑल बिलीव इट। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जितने स्टोरीज उतना मजा। Why do we want एक ही स्टोरी होना चाहिए? हमारा देश, we are a diverse country, विभिन्नवाद वाला देश है, तो जिसे राम की स्टोरी सुनना है उन्हें राम की स्टोरी सुनने दीजिए, जिनको कृष्ण की स्टोरी सुनना है उन्हें कृष्ण की स्टोरी सुनना है, जिनको विष्णु की स्टोरी सुनना है वो विष्णु के बारे में सुनेंगे, जिसको लक्ष्मी के बारे में सुनना है वो लक्ष्मी के बारे में सुनेंगे। भाई बहन कहेंगे कि नहीं भाई दूज, दिवाली इज ओनली अबाउट भाई दूज। सो यू नो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट अ फेस्टिवल, एंड आई थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज, वी शुड एंजॉय द स्टोरीज, फोकस ऑन द पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव। फेस्टिवल इज अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, मांगल्य, घर में शुभ आना चाहिए, लाभ आना चाहिए। दीज आर द आइडियाज दैट वी विल डिस्कस ऑन द देवदत्त पटनायक शो। वी कीप टेलिंग यू स्टोरीज हमारे संस्कृति के बारे में, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, सो दैट यू कैन शो ऑफ विद योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन कल्चर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पिक अप द फोन एंड आस्क। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहा हूं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। सो आई एम वेटिंग।
2: ऑन रेडियो मिर्ची
3: द देवदत्त पटनायक शो।
4: दिवाली पर पटाखे जलाना सही या गलत, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो,
1: ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो,
3: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
4: हेलो
0: देवदत्त हियर।
4: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi,
4: मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
4: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
4: हनुमान को लेके।
0: जी,
4: तो हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाती है, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माय सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
4: थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: Mirchi, it's hot.
1: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर्य मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते रहे। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt onmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show.
3: The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, लाइक मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं। और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड सुरेन सुंदरम। एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। नॉट जस्ट अनदर हिट सॉन्ग, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, पर सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा। नंबर 20।

कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीत कर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, टीवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।

0: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है, मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4।
1: नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 70.

व्याह करवा दो जी, इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: और ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई। अल्फा, एनिमल, सिकंदर, धुरंधर, एक शब्द, एक पंच। सर्च करने में वैसे आसान भी होता है, लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं, एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वोकैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी हैव गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद द लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Sureen ke saath only on Mirchi it's hot number 50 oh look at

मी ये कॉकटेल का सबसे हल्का गाना है, एंड मे बी दैट्स व्हाई वल्ला इस हफ्ते भी नंबर 15 पर है। और कॉकटेल 2 को देखकर एक बात काफी अच्छे से समझ आ जाती है, हिट गाना बनाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल है एक्साइटमेंट को जिंदा रखना। आजकल बॉलीवुड में फिल्म अनाउंस करना बहुत आसान हो गया है, मोशन पोस्टर, टाइटल रिवील, टीजर, सोशल मीडिया ट्रेंड, और फिर होता है इंतजार, अ लॉन्ग वेट। नाउ यश की टॉक्सिक को ही देख लो, पहले एक रिलीज डेट आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अब फाइनली 26 अगस्त 2026 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। एंड देन यू गॉट सलमान खान की मातृभूमि। दो गाने आ गए थे वैसे मिर्ची टॉप 20 पर, फिल्म की बातें भी शुरू हो गई थी, लेकिन आज अगर आप सलमान खान को गूगल करोगे तो ज्यादा डिस्कशन उनकी अगली फिल्म का हो रहा होता है, वेयर ही इज वर्किंग विद अ साउथ इंडियन डायरेक्टर कॉल्ड वामशी पेडिपल्ली। अजीब है ना, कभी कभी लगता है बॉलीवुड फिल्म बनाना नहीं एक्सपेक्टेशन मैनेज करना हार गया है, क्योंकि हाइप की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप वक्त पर रिलीज नहीं कर पाए, ऑडियंस रुकती नहीं, वो अगला ट्रेलर देख लेती है, अगला गाना सुन लेती है, अगली फिल्म का इंतजार करने लगती है। लेकिन नंबर 14 पर एक टिपिकल समर कॉमेडी बॉलीवुड फिल्म धमाल 4 का ये भोजपुरी फ्लेवर वाला फुल ऑन देसी गाना चटनी। नंबर 14।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 13।

0: नंबर 12।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

ये जो सुना ना अभी, ये इस हफ्ते की नई एंट्री है, नंबर 12 पर, इस कमीना 2.0। अबे क्या है ये? देखो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि जब म्यूजिक अच्छा लगता है ना, मैं दिल से उसकी तारीफ करता हूँ, और जब म्यूजिक बकवास होता है तो उसे भी उतनी ही ऑनेस्टी से कॉल आउट करता हूँ। यार एक क्लासिक गाने को रीमेक करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसे बिना फील के, वाइब के, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिना सब्सटेंस के रीमेक करना जरूर गुनाह है। ओरिजिनल इश्क अमीना सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, उसमें शरारत थी, आइटम सॉन्ग होने के बावजूद एक अदा थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो बात ही नहीं है। देखो धुरंधर ने हमें सिखा दिया है कि अगर रीमेक्स बनानी ही है तो वो कैसे बनानी है।

धुरंधर ने सिर्फ गाने उठाए नहीं, उसकी स्पिरिट को समझा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज जो है वो सही की इन लोगों ने, सोनू निगम और अलका याग्निक की असली आवाज को बरकरार रखा, बाकी सब इतना ऑर्डिनरी है भाई। और अफसोस इसलिए भी है क्योंकि बेबी डो डाई डो का ट्रेलर जेन्युइनली मुझे एक्साइटिंग लगा था। एक डेफ और म्यूट असैसिन, क्या कमाल का प्रमाइस है। लेकिन कभी कभी एक गाना फिल्म की एक्साइटमेंट को बना भी देता है और उसे बिगाड़ भी देता है। कॉकटेल 2 ने पहला वाला काम किया था, एक के बाद एक चार्ट बस्टर्स, और उन्हीं में से एक इस सीजन का सबसे खूबसूरत लव सॉन्ग है। नंबर 11 पर दिस इज द किंग अरिजीत सिंह विद द सॉन्ग तुझको। नंबर 11।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 10.

0: गुरु रंधावा के हिट फैक्ट्री से एक और चार्ट बस्टर केयर सिर्फ दो हफ्तों में टॉप 10 में आ गया है। और ऑनेस्टली अगर परफॉर्मर्स की बात चली है तो सनी देओल का नाम उस लिस्ट में हम कैसे ना लें। हाल ही में उनकी एक फिल्म इक्का का टीजर मैंने बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा और उसमें सनी देओल को फिर से लॉयर के रूप में देखते ही मुझे एक बात समझ आ गई। अगर आप 2005 के बाद पैदा हुए हैं ना तो शायद तारीख पे तारीख आपके लिए सिर्फ एक मीम होगा। लेकिन मीम तो वो बाद में बना, पहले वो सिनेमा था। 34 साल पहले दामिनी नाम की एक फिल्म में सनी देओल ने एक अदालत के सीन को इतना आइकॉनिक बना दिया कि उसके डायलॉग्स आज भी लोग कोट करते हुए नहीं थकते।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिलोट इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। मिलोट दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा।
0: आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सिर्फ तारीख पे तारीख ही नहीं, 2.5 किलो का हाथ भी इसी फिल्म की देन है। नाउ इक्का का टीजर उस याद को भी सल्यूट कर रहा है और तब समझ आता है कि कुछ परफॉर्मेंसेस फ्राइडे से संडे तक नहीं जीती, 3 दशक तक जिंदा रहती हैं और उनके डायलॉग्स 30 साल बाद भी हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। और कुछ फिल्मों का सफर थिएटर्स में 30 दिन भी मुश्किल से कटता है। है जवानी तो इश्क होना है इज डाउन टू मे बी 1 or 2 शोज एट द सिनेमा हॉल्स, लेकिन उसका साउंड ट्रैक अभी भी लड़ रहा है, ये जंग लड़ रहा है। इस हफ्ते नंबर 9 पर ये है वाओ।
2: नंबर 9 वाओ।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 8

आई हैव नेवर केयर्ड अबाउट बॉक्स ऑफिस नंबर्स. मुझे सच में कभी फर्क नहीं पड़ा. अगर पड़ा होता तो पान सिंह तोमर, कहानी, तनु वेजमनु और क्वीन जैसी फिल्में मैं थिएटर्स देखने कभी नहीं जाता. बट 2026 में नंबर्स हैव स्टार्टेड मीनिंग समथिंग, राइट? कॉकटेल 2 ने अभी हाल फिलहाल ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. एक वक्त था जब ये बड़ी न्यूज हो सकती थी, आज ये बस एक नंबर लगता है. और शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, हमने फिल्मों को देखना कम, उन्हें कंपेयर करना ज्यादा शुरू कर दिया है. एक तरफ धुरंधर जैसी इवेंट फिल्म्स हैं, जिन्हें देखना सिर्फ फिल्म देखना नहीं, एक कल्चरल मोमेंट बन जाता है. नंबर 6,

0: गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर इज अ नंबर 6, एक ऐसी फिल्म जो 3,000 करोड़ के फिगर्स टच कर रही है। एंड देन दूसरी तरफ वो फिल्में जो शायद ओपनिंग वीकेंड की हेडलाइंस ना जीतें, लेकिन वक्त जरूर जीत लेती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कलेक्शंस का नहीं हुआ, उस बीच वाली फिल्म का हुआ। वो फिल्म जो ना फ्रेंचाइज थी, ना सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा थी, ना उसके पास 500 करोड़ का बजट था, बस एक ईमानदार कहानी होती थी उन फिल्मों में और उसे कहने का हौसला होता था। सच कहूं, मुझे हिंदी सिनेमा का वही चेहरा सबसे ज्यादा याद आता है, क्योंकि उसी ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें हम बॉक्स ऑफिस से नहीं अपने दिल से याद रखते हैं। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग एक ऐसी फिल्म से है, दम लगा के हायशा अपॉन की आवाज में। दिस इज मोमो के धागे।
1: Special request song. Yeah.

धुरंधर टू का आरी आरी जब जब सुनाई देता है कहीं भी, उसके साथ धूल मिट्टी और देसी स्वैगर की वो खुशबू भी साथ आती है। लेकिन बॉलीवुड की एक और पुरानी आदत है और उसे बॉलीवुड ने कभी छोड़ा ही नहीं, दुनिया भर की जुबानों से जो बे इंतहा इश्क है। कभी हम स्पेन चले जाते हैं।

कभी श्रीलंका की भाषा सिनेला में हम मणिके सुन लेते हैं। और प्रीतम दा तो शायद इस गेम के सबसे बड़े प्लेयर हैं। रिमेम्बर तेरा होने लगाऊं।

अंग्रेजी लव्स इंडियन मेलोडी. फनली इनफ बॉलीवुड कभी फॉरेन लैंग्वेज में गाने नहीं बनाता, वो सिर्फ हिंदी गानों को एक पासपोर्ट दे देता है. गाना चाहे स्पेन चले जाए, इटली घुमाए या फिर श्रीलंका से होकर निकले, दिल उसका हमेशा हिंदी में ही धड़कता है. और शायद इसलिए ये गाने फैशनेबल लगते हैं, ग्लोबल लगते हैं, लेकिन टोटली अपने लगते हैं. इस हफ्ते नंबर 3 पर कॉकटेल 2 का वो समर एंथम जिसमें इटली का रंग है और बॉलीवुड का दिल है. दिस इज राघव चैतन्य विद माशुका नंबर 3.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 2.

0: से चार ही हफ्तों में ऊंचा लंबा कद हैज क्लाइम्ड नंबर टू। पुराना हुक, नई पैकेजिंग एंड मुझे आनंद राज आनंद साहब के लिए इतनी खुशी हो रही है। उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में साइन की हैं एंड द मैन डिजर्व्स इट ऑल। और एक बार फिर बॉलीवुड ने साबित कर दिया है कि सीक्वल सिर्फ फिल्मों के नहीं होते, गाने भी दूसरी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक सीक्वल ऐसा भी आ रहा है जहां एक्साइटमेंट फिल्म से ज्यादा उसके म्यूजिक को लेकर है, आवारापन 2। और शायद उसकी वजह यह है कि आवारापन को कल्ट उसकी कहानी ने नहीं, उसके म्यूजिक ने बनाया था। दो गाने ऐसे आए थे जो कभी किसी की प्लेलिस्ट से बाहर ही नहीं निकल पाए।
1: तो फिर आओ मुझको सताओ।
0: And then the one that became a timeless heartbreak classic.

हर सीक्वल पहली फिल्म से बड़ा बनना चाहती है, लेकिन आवारापन 2 को सिर्फ एक चीज मैच करनी है, अपनी वो साउंडट्रैक। और यकीन मानिए, वो एवरेस्ट चढ़ने जैसा चैलेंज है, क्योंकि कुछ एल्बम्स सिर्फ हिट नहीं होती, वो एक जेनरेशन की यादों में परमानेंटली डाउनलोड हो जाती हैं। अगर आवारापन 2 ने वही एहसास फिर से जिंदा कर दिया तो मिलेनियल्स सिर्फ टिकट्स नहीं खरीदेंगे, वो अपनी यादें दोबारा जीने जाएंगे। लेकिन फिलहाल पिछले 20 हफ्तों से यादें नहीं, हिस्ट्री लिख रहा है एक और साउंडट्रैक। 20 हफ्ते ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड नंबर वन, रील से लेकर शादियों तक इंडिया का नंबर वन गाना। जैस्मिन सैंडलर्स, मधुबंती बागची शरारत करने वाले हैं फिर से नंबर वन।

0: इतने गाने, लेकिन इनमें से कितने अगले हफ्ते तक रह पाएंगे और कितने सालों बाद भी साथ रह जाएंगे, इस सफर का हिसाब किताब हम ही रखते हैं। लेकिन इस बार का हिसाब होता है खत्म। शरारत कंटिन्यूज टू बी द नंबर वन सॉन्ग। मिर्ची टॉप 20 विल बी बैक अगेन विद अनदर एपिसोड। तो अगली बार तक सिरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Dil wali gal kar le, pyar mere naal kar le.

Mirchi. It's hot.

0: जी
1: की गल करनी है
0: तेरे मेरे बारे
1: की
0: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है
1: बचपन दी बात और सी
0: यार 10 साल हो गए
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ फोन ते गल करती हूँ
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है टू सेट द पॉप क्लॉक ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट गाने हैं, उसमें एक नई एंट्री है। हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना होने वाला है, अ स्पेशल स्पॉटलाइट, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे उतरा है, शुरुआत ही इस हफ्ते के एक धमाकेदार गाने के साथ हो रही है, साडी सुन बाय हर्ष नुसी। हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव। गाना कास्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। साडी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद गाना नंबर 9 पर इस अनीश सरकार हृदय का गाना उड़ी उड़ी, जो पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक Only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 10.
2: हाउ चुप कर लंघ जावे, कोल दी तू संघ जावे, को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

0: ढक जाए।
1: This one is such a fun song. गाने का नाम है उड़ी उड़ी by अनीश सरकार। हृदय पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए this week on गाना नंबर 9। इस काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो इस काउंटडाउन का सबसे सीनियर सिटीजन है।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
1: Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mujhe follow kare. Mera handle is @RJKanika. Follow karna bilkul free hai. @RJKanika par koi gaane suggest karne hai, koi baatein batani hai, bindaas aake hit me up. Jo agle wala gaana hai, usse is countdown pe pure 23 hafte ho chuke hain. It's a Coke Studio Bharat song. Jitna khoobsurat ye gaana hai, उतनी ही खूबसूरत इस गाने तक पहुंचने की जर्नी है। आप सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट जो सिर्फ अपने बेडरूम में गिटार के साथ कुछ लोगों के लिए गाने लिखता है, बनाता है, वो अपनी जॉब करता है, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई रियलिटी शो स्टार नहीं, कोई बड़ा ग्रैंड लॉन्च नहीं, सिर्फ यूट्यूब के जरिए अपने खुद के लिखे गाने अपनी ऑडियंस को सुनाता है। उसकी ऑडियंस में 5 से 10 लोग जुड़े, 10 से 50, 50 से 100, ऐसे करते करते वो एक दिन कोक स्टूडियो भारत का सबसे बड़ा गाना बनाता है। आई एम टॉकिंग अनूप जैन एंड उनकी जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वंस दैट वी हैव सीन इन इंडी पॉप म्यूजिक। बट व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग जो अनूप जैन का है, इसमें ना किसी ने भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की कि जी हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है तो आप ऐसे बड़ा ड्रामेटिक गाना बनाओ। प्लेटफॉर्म ने आर्टिस्ट को नहीं बदला बल्कि उनकी दुनिया में वो खुद ढल गए, और इसीलिए शायद ये जो गाना आने वाला है

जिसका नाम है अर्ज किया है, दैट्स मोर देन अ फ्यूजन, इट्स अ लिटरेरी फ्यूजन, जहां उर्दू शायरी मिलती है कंटेम्प्रेरी पॉप सॉन्ग राइटिंग से, एंड अनूप जैन इज द किंग ऑफ पॉप सॉन्ग राइटिंग। एंड आई स्वेयर ये गाना इस बात का इतना बड़ा प्रूफ है दैट आज इंडिया का इंडिपेंडेंट म्यूजिक अपने आप में इतना मच्योर, इतना इंडिपेंडेंट हो गया इन रियल सेंस दैट बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक कोक स्टूडियो भारत ना कि सिर्फ उसे पहचान रहे हैं, उसको जगह दे रहे हैं और उसको बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से। दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग साउंड्स सो इनक्रेडिबल, बिकॉज इस गाने के जरिए अनूप जैन हर उस आर्टिस्ट के दिल की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार ये गाना 6 हफ्ते नंबर 1 पे भी रहा है। पिछले हफ्ते 10 पर आ गया था, लेकिन फिर से 2 पोजीशंस ऊपर जंप करके अनूप जैन की आवाज में गाने का नाम है अर्ज किया है दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनका। एंजॉय। नंबर 8।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Gana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi. Number 6.

0: The one and only Diljit Dosanjh, resident dealer of superhit songs, पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले एक नई नवेली एंट्री हुई जसलीन रॉयल का गाना इनाम, जिसने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ. मेरा हैंडल इज @RJKanika. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू शाइन स्पॉटलाइट ऑन आर इंडी पिक ऑफ द वीक. एंड आज का गाना स्पॉटलाइट इज गाने का नाम है रोज रोज बाय द येलो डायरी फीचरिंग शिल्पा राव, जो साल 2021 में रिलीज हुआ था. आज साल 2024 में हमें रोज रोज आदत है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बड़े बड़े कोलैबोरेशंस देखने की, लेकिन 6 साल पहले 5 साल पहले इट वॉजंट लाइक सच अ रेगुलर डील. एंड दैट्स व्हाई दिस सॉन्ग स्टैंड्स आउट. एक वक्त था जब इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का सपना था कि बस उनका गाना किसी फिल्म तक पहुंच जाए, लेकिन 2019-2020 के दौर से वो उल्टा होना शुरू हुआ था जब फिल्मों के बड़े प्लेबैक सिंगर्स इंडिपेंडेंट म्यूजिक के मीटिंग पॉइंट पे आने लग गए. एंड देन दिस सॉन्ग वॉज अ एब्सोल्युटली जेनरेशनल रेवोल्यूशनरी सॉन्ग. कॉज एक तरफ है येलो डायरी, वन ऑफ द बेस्ट इंडी पॉप बैंड्स दैट वी हैव सीन. मुंबई से उन्होंने अपने बैंड की शुरुआत करी. कोई ओवरनाइट वायरल एक्ट नहीं है. सॉन्ग टू सॉन्ग, गिग्स टू गिग्स, कॉलेज फेस्टिवल, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई. राजन बत्रा, उनकी राइटिंग, उनकी ऑल्टरनेटिव पॉप साउंड हमेशा उन लोगों के साथ कनेक्ट करती है जो लिरिक्स के जरिए गानों में अपनी कहानी ढूंढते हैं. एंड देन दिस सॉन्ग हैज शिल्पा राव. शिल्पा राव हु इज सिनोनिमस फॉर बिग स्क्रीन सॉन्ग्स लाइक खुदा जाने चलिया, और उन्होंने इस गाने को अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छा बना दिया. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए फॉर दिस हार्ट ब्रेक सॉन्ग, जहां एक अजीब सी खामोशी के बारे में बात हो रही है, जहां कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, बातें हो रही हैं पर असली बातें होनी बंद हो गई है. येलो डायरी का गाना फीचरिंग शिल्पा राव. दिस इज रोज रोज ऑन अ गाना स्पॉटलाइट दिस वीक. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

डूड दिस इज द सॉन्ग जिसकी वजह से राजन बत्रा मेरे एब्सोल्यूट टॉप फेवरेट वोकलिस्ट बन गए थे. व्हाट अ वॉइस, गूज़बम्स आ जाते हैं. उनकी गाने के थ्रू जो फीलिंग्स बयां करना जा रहे हैं ना, वो इनटू 10 टाइम्स फील होती है. राजन बत्रा की आवाज़, येलो डायरीज का गाना फीचरिंग शिल्पा राव, दैट वॉज रोज रोज. अगर इस गाने को थोड़ा भी भूल गए थे तो वापस अपनी सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए. वन ऑफ दोज पॉप सॉन्ग्स जो उतने ही बड़े हुए जितने फिल्म के गाने होते हैं. ना काउंटडाउन पे आगे बढ़ने से पहले इट्स टाइम फॉर अ इंडी पॉप क्विज. एट आरजे कनिका पर आओ और मुझे बताओ दैट इंडिया का पहला रियलिटी स्टार कौन था जो एक म्यूजिशियन था. इंडियन आइडल जीते थे, फिर उनका एक गाना आया था जिसमें बारिश हो रही है. कौन थे वो आर्टिस्ट जो एक रियलिटी शो के जरिए मोहब्बतें लुटा रहे थे. एट आरजे कनिका पर जल्दी आके मुझे उनका नाम बताओ. काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हुए वी माइट फीचर हिज सॉन्ग. अभी अप नेक्स्ट काउंटडाउन का अगले वाला गाना इज अ संजू राठौर सॉन्ग. गाने का नाम है बैंगल्स. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बैंगल्स इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 5.

0: आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन ऊपर जम करके गाने का नाम है ए अजनबी, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
0: सुन रहे हैं आप। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझसे कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई भी गाना सजेस्ट करना हो, बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

ओजी भाई कुमार सानू कॉल तेरा मेरा प्यार। इस गाने के बाद इतने सारे मैसेजेस, कहानियां, किस्से सुनाए लोगों ने मुझे अपने कॉलेज रोमांस के। एंड अश्का और मैं बहुत दिल से बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहते हैं आपको इस सेगमेंट के साथ क्लासिक को इतना प्यार देने के लिए। वी रियली टेक योर रिक्वेस्ट वेरी सीरियसली। जो इस हफ्ते हम गाना फीचर करने वाले हैं वो भी आपकी रिक्वेस्ट से ही बजा रहे हैं। द सॉन्ग वी गोना फीचर दिस वीक इज

The OG pop star song गाने का नाम है मोहब्बतें लुटाऊंगा by अभिजीत सावंत। मैं ये सबका गाना बन गया था, like एक pop anthem बन गया था पूरे देश का गाना। साल था 2005, हमारे घर में लैंडलाइन होता था। कॉल करके SMS करके वोट्स भेजे जा रहे थे। पहली बार लगा कि टीवी से हमने किसी को जिताया है और सब उस जीत का हिस्सा थे। हमें मिला हमारा पहला इंडियन आइडल अभिजीत सावंत एंड ये था उनका पहला गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा। एंड इवन द सॉन्ग नाउ जब मैं उस गाने की वीडियो को देखती हूँ विद मच मोर सेंस एंड पर्सपेक्टिव, इट ऑल मेक सेंस। उस गाने के थ्रू वो अपनी जर्नी ही तो बता रहे हैं दैट थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एक मिडिल क्लास लड़का था बॉम्बे से जो एक स्टेज पर खड़ा हुआ और पूरे देश ने मुझे यहाँ जिता दिया, तो अब मैं सिर्फ मोहब्बतें लुटाऊंगा ब्रो। स्कूल में, ट्यूशन में, म्यूजिक चैनल्स पर, रेडियो पर, हर जगह अभिजीत सावंत ही थे। इट वॉज वन ऑफ दोज रियल रेयर मोमेंट्स। पर एकदम सच बताना, दिल के कोने में झांक कर बताना, झूठ मत बोलना मुझे, कहीं ना कहीं हम इस गाने को भूल चुके थे। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, गाना चलते ही यू विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दैट सिंपलर टाइम्स। अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के लिरिक्स, प्रेम एंड हरदीप का म्यूजिक, 2005 का ये आइकॉनिक इंडी पॉप गाना, दिस इज मोहब्बतें लुटाऊंगा ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: अभिजीत सावंत की आवाज में दैट वाज मोहब्बतें लुटाऊंगा, बट एक्चुअली यू नो आर द लिरिक्स, समीर ने क्या लाइंस लिखी हैं, इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, लाइक एग्जैक्टली टेलिंग अभिजीत सावंत की जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, 90s 2000s का वो जो भी इंडी पॉप क्लासिक गाना है जो यू स्टिल लव हमारे साथ शेयर करो। अश्काय और मैं आपकी रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं, वी माइट फीचर योर फेवरेट नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का आइकॉनिक कोलैबोरेशन, गाने का नाम है रांझा, फीचरिंग प्रोडक्शन बाय डेविड गेटा। नेवर थॉट आई विल से ऑल दीज नेम्स टुगेदर। 12 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंस्टाग्राम पर जाओ, कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर लोग गाने सुन के गानों का नाम भूल जाते हैं और मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कनिका वो गाना नंबर 5 कौन सा था, जो गाना नंबर 9 पर बजाया वो कौन सा गाना था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था हर्ष नुसी का साडी सुन। उसके बाद अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी वॉज ऑन गाना नंबर 9। गाना नंबर 8 पर दिस वीक अनूप जैन का अर्ज किया है।
2: कायरे जो थे वो शायर बने।
1: जसलीन रॉयल का इनाम ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 7 पर। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6।
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डाब दबीना।
1: संजू राठौर विद बैंगल्स ऑन गाना नंबर 5। स्टूडियो भारत का आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी ऑन गाना नंबर 4। दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 3। एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बैरन द हरियाणवी सेंसेशन। 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग यानी गाना नंबर 1 पर है एक बार फिर से शीशा बाय मिट्टा रॉर स्वरा वर्मा, मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन। ये गाना भी 14 हफ्तों से बरकरार है। सो दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन गाना नंबर 2, फिर मिट्टा रॉर का शीशा ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 2।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर फ्राइडे बॉलीवुड हमें बताता है कि उसने इस हफ्ते क्या बनाया, लेकिन हर मंडे ऑडियंस बॉलीवुड को बता देती है कि उसने क्या रिजेक्ट किया। और शायद इसलिए हिंदी सिनेमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है। आज सिर्फ बड़े स्टार्स काफी नहीं है, सिर्फ बड़े बजट्स काफी नहीं है, सिर्फ नॉस्टैल्जिया भी काफी नहीं है। अच्छी फिल्म हो तो लोग उसे ढूंढ ही लेते हैं, लाइक मैं वापस आऊंगा। बुरा रीमेक हो तो लोग उसे छोड़ भी देते हैं। और जो चीज कभी सिर्फ पोस्टर्स और प्रमोशंस डिसाइड करते थे, आज वो प्लेलिस्ट, रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ डिसाइड करते हैं। यानी बॉलीवुड बदल रहा है, लेकिन उसे बदल कोई और नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू ड्रॉप ऑफ द मिर्ची टॉप 20। मैं हूं आपका ट्रैवल बडी ऑन दिस राइड सुरेन सुंदरम। एंड वो मंजर आ गया है जहां एक गाने को 13 महीनों बाद शायद हम अलविदा कहने जा रहे हैं। हर जेनरेशन अपनी मोहब्बत को एक गाने में हमेशा के लिए कैद कर लेती है। शायद इस जेनरेशन के लिए वो है सैयारा। नॉट जस्ट अनदर हिट सॉन्ग, ये वो गाना था जिसमें लाखों लोगों ने अपना प्यार, अपना इंतजार और अपना टूटना छुपा दिया। वक्त बदलेगा, महीने बदलेंगे, पर सालों बाद कहीं दिल के किसी कोने में एक सैयारा छुपा होगा। नंबर 20।

कभी कभी बॉक्स ऑफिस एक बहुत खूबसूरत बात सिखा देता है। मैं वापस आऊंगा उसका जीता जागता सबूत है। फिल्म ने शोर मचाकर नहीं, लोगों का दिल जीत कर अपनी जगह बनाई। और शायद हिंदी सिनेमा भी धीरे धीरे कुछ और सीख रहा है। बहुत सालों तक बॉलीवुड ने हमें एक ही तरह की हीरोइन दिखाई, एक तरह का चेहरा, एक तरह की बॉडी, जिसे प्यार सिर्फ कुछ लोगों को ही सूट करता हो ऑन द स्क्रीन। फिर आई अंजलि आनंद, टीवी की सबसे ब्रिलियंट परफॉर्मर्स में से एक, और फिर उन्हें मिली एक फिल्म।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, डायरेक्टेड बाय करण जौहर हिमसेल्फ। अब उसमें अंजलि का रोल छोटा था, लेकिन वो रोल बन गया बेहद यादगार। एंड अब धमाल 4 में वो सिर्फ फ्रेम का हिस्सा नहीं है, वो लव स्टोरी का हिस्सा है। और मुझे लगता है ये कास्टिंग सिर्फ एक कास्टिंग नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि हीरोइन होने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट्स नहीं, परफेक्ट ऑनेस्टी चाहिए होती है। और अंजलि में वो ऑनेस्टी साफ नजर आती है। सच कहूं, अगर हिंदी सिनेमा वाकई बदल रहा है तो उसकी पहचान उन चेहरों से होगी जिन्हें देखकर ज्यादा लोग कहेंगे ये तो हम जैसे लगते हैं, ये तो हम ही हैं। नंबर 18 पर इस हफ्ते एक नई एंट्री हो रही है, मराठी सेंसेशन संजू राठौड़ की आवाज में रितेश देशमुख और अंजलि आनंद पर पिक्चराइज। दिस वन इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड इस गाने का नाम है साड़ी, फ्रॉम धमाल 4। नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17

व्याह करवा दो जी, इस हफ्ते नंबर 17 पर है, लेकिन मेरी नजर गाने पर नहीं, हमेशा उसके टाइटल पर ही जाती है। है जवानी तो इश्क होना है, और मुझे सच में लगता है कि बॉलीवुड को फिर से लंबे टाइटल्स याद आने लगे हैं। देखो, हम 90s वाले लोग एक अजीब सी लग्जरी के साथ बड़े हुए थे। उस जमाने में फिल्म के टाइटल सिर्फ नाम नहीं होते थे, पूरे के पूरे इमोशंस होते थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमारा दिल आपके पास है, कभी खुशी कभी गम, एंड देन ऑफ कोर्स यू गॉट टू ऑफ माय फेवरेट्स, बोथ ऑफ देम वर सलमान खान फिल्म्स। नंबर 1 पर

0: और ऐसा लगता था जैसे पोस्टर देखने से पहले ही फिल्म आपसे बात कर रही हो। फिर सिंप्लिसिटी ट्रेंड बन गई, अल्फा, एनिमल, सिकंदर, धुरंधर, एक शब्द, एक पंच। सर्च करने में वैसे आसान भी होता है, लेकिन याद रहने के लिए सिर्फ छोटा होना काफी नहीं होता। शायद इसलिए 25-30 साल बाद भी हम उन पुराने टाइटल्स को आज भी पूरा बोलते हैं, एक भी लफ्ज नहीं छोड़ते, क्योंकि वो टाइटल्स नहीं थे, वो बॉलीवुड की वोकैबुलरी बन गए थे। नंबर 16 पर इस हफ्ते वी हैव गॉट द टू वर्ड्स कॉल्ड भूत बंगला, जिसका गाना तू ही दिसदा इज ट्रैकिंग वेल विद द ऑडियंस। लेकिन लंबी टाइटल वाली फिल्मों को याद करते हुए, हियर इज अ मॉडर्न डे फिल्म विद द लॉन्गेस्ट टाइटल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। उसका शायद सबसे पॉपुलर एंड येट सबसे खूबसूरत गाना मोहित चौहान इन सुपर फॉर्म, ये है पीलू। प्रीतम दा का म्यूजिक, इरशाद भाई का लिखा, बनाते इसको इस हफ्ते का रिवाइंड।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

फॉर मी ये कॉकटेल का सबसे हल्का गाना है एंड मे बी दैट्स व्हाई वल्ला इस हफ्ते भी नंबर 15 पर है। और कॉकटेल 2 को देखकर एक बात काफी अच्छे से समझ आ जाती है, हिट गाना बनाना मुश्किल है लेकिन उससे भी मुश्किल है एक्साइटमेंट को जिंदा रखना। आजकल बॉलीवुड में फिल्म अनाउंस करना बहुत आसान हो गया है, मोशन पोस्टर, टाइटल रिवील, टीजर, सोशल मीडिया ट्रेंड, और फिर होता है इंतजार, अ लॉन्ग वेट। नाउ यश की टॉक्सिक को ही देख लो, पहले एक रिलीज डेट आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अब फाइनली 26 अगस्त 2026 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। एंड देन यू गॉट सलमान खान की मातृभूमि। दो गाने आ गए थे वैसे मिर्ची टॉप 20 पर, फिल्म की बातें भी शुरू हो गई थी, लेकिन आज अगर आप सलमान खान को गूगल करोगे तो ज्यादा डिस्कशन उनकी अगली फिल्म का हो रहा होता है, वेयर ही इज वर्किंग विद अ साउथ इंडियन डायरेक्टर कॉल्ड वामशी पेडिपल्ली। अजीब है ना, कभी कभी लगता है बॉलीवुड फिल्म बनाना नहीं एक्सपेक्टेशन मैनेज करना हार गया है, क्योंकि हाइप की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप वक्त पर रिलीज नहीं कर पाए, ऑडियंस रुकती नहीं, वो अगला ट्रेलर देख लेती है, अगला गाना सुन लेती है, अगली फिल्म का इंतजार करने लगती है। लेकिन नंबर 14 पर एक टिपिकल समर कॉमेडी बॉलीवुड फिल्म धमाल 4 का ये भोजपुरी फ्लेवर वाला फुल ऑन देसी गाना चटनी। नंबर

12. कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

ये जो सुना ना अभी, ये इस हफ्ते की नई एंट्री है, नंबर 12 पर, इस कमीना 2.0। अबे क्या है ये? देखो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि जब म्यूजिक अच्छा लगता है ना, मैं दिल से उसकी तारीफ करता हूँ, और जब म्यूजिक बकवास होता है तो उसे भी उतनी ही ऑनेस्टी से कॉल आउट करता हूँ। यार एक क्लासिक गाने को रीमेक करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसे बिना फील के, वाइब के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिना सब्सटेंस के रीमेक करना जरूर गुनाह है। ओरिजिनल इश्क अमीना सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, उसमें शरारत थी, आइटम सॉन्ग होने के बावजूद एक अदा थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो बात ही नहीं है। देखो धुरंधर ने हमें सिखा दिया है कि अगर रीमेक्स बनानी ही है तो वो कैसे बनानी है।

कॉकटेल 2 ने पहला वाला काम किया था, एक के बाद एक चार्ट बस्टर्स, और उन्हीं में से एक इस सीजन का सबसे खूबसूरत लव सॉन्ग है। नंबर 11 पर दिस इज द किंग अरिजीत सिंह विद द सॉन्ग तुझको। नंबर 11।